0: you on the network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: गली में एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए। रेडियो अमन नेटवर्क 1 रंग

ऐसा उस पर दबा दे लगी दिल भी छेदाकीम सॉन्ग ने भाई चश्मा दे विशाल वाजी बगुंदे वास तोरो जड़ल स्पुगमे खफा गुंदे वा ओ माय पमख मांदे खालू न शमरल ओ दाले वने पखो बूदो गुंदे वा

0: और आप डेली इस टाइम शो करोगे या कभी कभी आई एम अच्छा गुलाल फ्राम ठांग और के यो जहान मनन है तोता रेडियो मन करके जे वेलकम हर कलाए मुफ्ती से सीधा कि बिल्कुल अगर शो छे टाइम कवल है 11 ना 12 बजे पर ये सिफात कास्ट में नो मुफ्ती से सीधा कहना आगा चुटियानो मने दा और सीधा कहना दगा शो सीधा जी दाबो दे तू सिखबल रोर तू सिखबल कुरबा जी यानी के रास के हमदर चला है आगा कवि जी ढीली बैस पाने जी अगर भरोसे दे रहे थे 11 ना 12 बजे पर ये ठहर मानी जी वाले दे मैसेज का वाला यो जहान मनना है थैंक यू सो वेरी मच पशोला रतावो से जी ची अब रिदन को बस यो यो दवा मैसेजेस नोर शा मिलावा से नोर आई बात के साथ भाई जी मिकेट जी हाँ स्वीट भाई जानी और वेलकम कर रखे टांग के सब लिसनर को सलाम एंड टांग में जोया महसूद को स्पेशल सलाम छोटी महफिश को भी सलाम जी वालेकुम सलाम जी बिल्कुल जी क्यूटर जी खानी और टांग से जोया महसूद है और करके जी छोटी महफिश था ले तो से सलमुना जी दे हवा पुछो मने वाला से दल का प्रोग्राम रसरा और भी जी यो जहान मा दे मैसेज का भाई भाई जान मैसेज पूरा हुआ है का ना मैंने कहा इस टाइम ऑफ दिस आपका शो वो क्यों नहीं करता और मैं गुलाले अच्छा वही कहना अच्छे गुलाल ही हमारा खास सही रही गुलाल ने गुलाल है ओके जी गुलाल है खोरे के बिल्कुल सास्त में जवाब दर को शाह सासु मुफ्ती से इतना पोस्ट करे वहां में दर को जवाब यो जहान मनना है सो रहा है मैसेज जुनर से आगामी कंप्लीट शामिल हो सही ना मैसेज का बोलो यो जहान मनना है ओ संदर्भ के वेले ना मिले वैसे जी संदरे बगे बरका सबे दासा डेरा में ओका थाना मिला जैसे यो सली बिया ट्राई गवन जे खुदा काल छ दादा गुरु छ मिस्टर काल अरे सुक ते जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू जी अस्सलाम वालेकुम हेलो जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: सुगुरु से खबर के दी किम जैना जी
1: कमंगर
0: ना रहे दो साहे साहे तड़ाए मासे तड़ाए मासे देखा मंगर ने बदे तक असरा गरमा के जी जाहो बिल्कुल ठीक ठाक है दारो तवे जी तो से सरंगे शयो का ना कमंगर वाला टूल ठीक ठाक थी का ना मौसम सरंगे दा गर्मी दा का सोड़ दा नष्ट है बगे का ना और दारो तवे जी कमंगर के बठेरे रोगली थी का ना दी रोगले अच्छा लगा वाली थी सही सही और तो स्कूल तो वाले नए लोड अल्लाह दखिर वो की अल्लाह दखिर वो की तो नन छुट्टी करे था क्या
1: ना
0: अच्छा सही सही बीमार हो नहीं
1: बीमार
0: नहीं शाह शाह सही रहे बस भैया डेरे डेरे छुट्टे मां का वजह बीमार नहीं शाह स्कूल ने छुट्टे डेरे नहीं कवल पिछार शाह भैया सड़ाई चगुरा है आकिम सब्जेक्ट वे कहना आगा ना पोती किस जी भैया शाह शाह शाह शाह साहि दाए नूरा प्रोग्राम के सशा मिला बेचा था दोवा सलाम टेम रुसर भी ही काम दाए वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम खुशोला वो से साहि दाए गाने तो लगा वहाँ ठीक लगा था प्रोग्राम उस रोर वा बिल्कुल जग गाने तो लगा वहाँ शाम तलगा हुआ क्या ना साहि दाए तलगा हुआ साहि दाए ओके दादा का गाने तो लगा वहाँ शाम ओके जी थैंक यू सो वेरी मच खाना ही मिला वीर जी ना चेता है सार पके खोड़ा ला था जी

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: दिल की बात प्यार के साथ, तो सुने अपना पसंदीदा रेडियो हर पल हमारे साथ, रेडियो अमन 88.4 करो।
3: द करक पर तारीख के और मयारी इलाज लपारा दरमान होम्योपैथिक क्लिनिक के डॉक्टर मुस्तफा कमाल से नास्तवी। डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब होम्योपैथिक मेडिकल फील्ड के देश काला पूरे तजर्बा लरी और तीसरा करक के हम देश पक कालाना कारकवि। द डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब प निगरानी की द मुख्तलिफ बीमारियानो इलाज की गई लका असाबी कमजोरी असाबी दर्दुना मुख्तलिफ किस्म एलर्जी द बदन पारसोब द सरमनी बीमारियाने बेवख्ता विश्तान स्पेने दल विश्तान गुर्जे दल द नरीना और जनाना द बे औलादे बीमारियाने और द जनाना रसूले द ट्यूबुनो बांदेश द मशुमानो जहनी कमजोरी द जिगर द हराबेदो पवजा द बरातल बदहजम द कुलमो स्वजे दल द कुलमो टीबी खूनी औबादी बवासीर पेचस प्रास्टेट द त्रिही कानी द त्रिही सोजश द त्रिही परसोब द गुर्दो कानी द गुर्दो सोजश द गुर्दो खराबे दल द खपो तले स्वजे दल द खपो परसोब औ द खपो दर्दुना खलो उचे दल द मैदे स्वजे दल द मैदे केस औ वरसरा वरसरा यूरिक एसिड औ द बदन द दर्दुनो सरासरा द जुड़ुनो द दर्दुनो इलाज की द मशरानो और बेवसा खलको द पारा खसूसी रियायत हम डॉक्टर सिब वर्कवी। दरमान होम्योपैथिक क्लिनिक पताई तबलीगी मरकज करक नजदे खुशाल खान हटेक यूनिवर्सिटी हीरो जनरल स्टोर त महामख रबते नंबर ये दे 0301214413 यानी 0331 1212 413।

0: आवाज जैसे जुड़े नो आवाज
1: गुरगुरे तोर तोर द उंडे ओ सर दमखे
0: रेडियो अमन नेटवर्क वन रंग अमन अमन।

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: रखे आपको बाखबर, हर खबर से खबर वो जो आपके इल्म में लाना जरूरी है। रेडियो अमन नेटवर्क, यंग रंग अम।

हाँ जी बिल्कुल, फेसबुक तला रहे हम मलगिरी जिकुम दिया हम रोगली जी के ना बिल्कुल तो से वो लड़गुने इंतजार करे काल तब हम इंतजार करे गपशप जिकुम दा बोला गिजी तो से सर्वर गिजी प्रोग्राम के बोला गिजी तो से कमेंट्स पर हम प्रोग्राम के शरीक को

जी बिल्कुल आवाजी के नहीं जब जिकत सुकमल करे भले सरादी के ना नो दाना बने दैना बने खबर के ना चे लला सरादा लला प्रोग्राम हो रही के ना जी तेरा बना ना जी बिल्कुल दाऊ मुसरा मैसेज कमेंट्स तेरा रे मलगरी ची मुसरा रोवलियो